0: वाया नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाया नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

राम राम सन्झे पाँच बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङको बिजौरी से कोठरी सम्मको सड़क स्तरोन्नतिको काम धमाधम हुइति रहल बा। हाल सड़कको ड्रेन निर्माण तथा सबबेस धरना काम अन्तिम चरणमा पुगल बा। रु 44,87,00,000 लागतमा 15.58 किलोमिटर सड़क कालपत्रे हुई लगलग हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालित ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना अन्तर्गत उक्त सड़क बिजौरी बसदबारा जमुनी लक्ष्मीपुर दक्षिण कुररिया कञ्चवार हुइटी कोठरीसम्म निर्माण हुने बा। आपझट्ट कालोपत्रको काम शुरू हुन निर्माण कम्पनी एमसी एएनएसबीजी जेबी काठमाडौँको प्रतिनिधि सिलन बराल बटवारखल उहाँको अनुसार निर्माण कार्य हुन झट्ट सम्पन्न गर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत व्यावसायी तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता ओ रेन्टल सेवा प्रदायक से सहकारी कर्गिलक उहाँको कहिबाटिन। उहाँको अनुसार स्थानीय निर्माण व्यवसायको नक्सा समन्वयमा आवश्यक निर्माण उपकरण सामग्री ओ जनशक्ति परिचालन कर्गिलक हुर्से काम सहज हुलक हो। अस्फाल्ट प्रविधि से उक्त सड़क कालोपत्री हुने बा। वाकरकलाक आवश्यक अस्फाल्ट प्लांट लगायत को उपकरण जड़ान हो सैकल वर्षागारी बेस तथा सब बेस को काम संपन्न लक्ष्य धर्गिलक वहां बटुआ रखल। सड़क निर्माण में गुणस्तर हन समय ध्यान में धर्गिलक प्रतिनिधि बराल बटुआ रखल। पाछक 24 घण्टामा देशभर 1900 विपदको घटना हुइलबाट। ऊ घटनामा पर्कन 12 जना घाइते होरल। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुसार असोज 27 गते बिहान 10 बजे आजसम्म सर्पदंश आगलागी बाढ़ी पहिरो तथा जनावर आक्रमणको घटना हुइलखुइट। प्राधिकरणको प्रवक्ता शान्ति महतको अनुसार झापा मोरङ सिराहा काठमाडौँ चितवन नवलपरासी पूर्व कपिलवस्तु पाल्पा कैलाली ओ डोटीमा आगलागीको घटना हुइलबाट। उष्णक 13 थुम भोजपुर नवलपरासी पूर्व बाँकी ओ कञ्चनपुरमा सर्पदंशको घटना हुइलबाट। उष्णक ललितपुरमा पहिरो तथा कास्की ओ रूपन्देहीमा जनावर आक्रमणको घटना हुइलक प्राधिकरण जना राखल। विपदको घटनामा पर्क घाइते हुइलक सम्बन्धित जिल्लाको अस्पतालमा उपचार हुइति रहल बा। प्रारम्भिक विवरण अनुसार विपदको घटनासे करिब रू 28,50,000 बराबरको आर्थिक क्षति हो रहल। प्राधिकरणसे विपदको घटनासे हुइसक्ना जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सतर्कता अप्नाइकला ओ विपदको समयमा स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकायसे समन्वय गर आग्रह कै राखल। सरकारसे अत्यावश्यक बाहेक हालको लाग भोटेकोसी त्रिशुली बाढ़ी पाछक खोज तथा उद्धार चरण हुन स्थगन गर्न निर्णय कैराखल। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बैठक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपदको 21 औं बैठकसे अत्यावश्यक खोजसँग पुननिर्माण ओ पुनर्स्थापनाका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ़ाएका सम्बन्धित निकाय हुन निर्देशन देन निर्णय कैराखल। जिल्ला सुरक्षा समिति जिल्ला विपद व्यवस्था समिति राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति ओ स्थलगत अवलोकन समेतको सिफारिशका आधारमा उक्त निर्णय कर्गिलक हो। उष्णक बैठकको प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय ओ निकायको नक्से प्राप्त 504 ठो योजना तथा कार्यक्रमका लागि 5,59,17,72,27,00,000 रूपियाँ बराबरको बजेट स्वीकृतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश पछि निर्णय कैराखल। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावली 2077 बमोजिम स्वीकृत यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्जिने बा। उष्णका लागत अनुमान निखुल्लकको प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजना हुकनकको विवरण प्राप्त हुइलपाछ आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हुन निर्देशन दिइगिल बा। विठात आजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोमा रिमाल अब दिव्य फार्मेसी घोराईदाङमा
2: प्रत्येक दिन डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
1: प्रसूति जाँच तथा परामर्श
2: महिनावारी सम्बन्धी समस्या
1: सेतो पानी बग्ने समस्या
2: पाठेघर डिम्बाशय तथा स्त्री रोग जाँच
1: बाँझोपन सम्बन्धी परामर्श
2: परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा
1: गर्भावस्थामा हुने जटिलता व्यवस्थापन
2: महिलामा पिसाब चुहिने समस्या
1: प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात परामर्श
2: रजोनी वृद्धि सम्बन्धी परामर्श
1: एचपीभी संक्रमण तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर
2: स्तन सम्बन्धी समस्या परामर्श
1: नोट दिनको समयमा व्यस्त महिला महानुभावलाई ध्यानमा राख्दै सन्ध्याकालीन तथा प्रभातकालीन सेवा उपलब्ध छ
2: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ
1: सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 98-478-28913 98-478-26163

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक
2: नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने दाँत फाल्ने नयाँ दाँत राख्ने दाँत सफा गर्ने चम्किलो बनाउने बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 0825917694, मोबाइल नम्बर 9822877494।
3: दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा हाम्रा योग्य इमानदार सक्षम र कर्मठ प्रजातान्त्रिक उद्यमी संघ उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई अत्यधिक मतले विजयी बनाऊ। प्रजातन्त्र व्यवसायको हकहित र स्थानीय विकास हाम्रो प्रतिबद्धता। नरेश कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष, भरत प्रसाद रेग्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मन बहादुर बुढाथोकी उद्योग उपाध्यक्ष, माधव खनाल महासचिव, सूरज बुढाथोकी सचिव, दीपक पण्डित कोषाध्यक्ष, पुष्कर राज न्यौपाने वामदेव सह कोषाध्यक्ष, सुलोचना गौतम पोखरेल महिला सदस्य, निम बहादुर बुढाथोकी वस्तुगत सदस्य, बदरुद्दीन राई सदस्य, दिवाकर पाण्डे दीपक सदस्य, मुक्तिराम खनाल सदस्य, थानेश्वर बुढा सदस्य, केशव डीसी सदस्य, ओमकान्त रेग्मी सदस्य, सुभाष न्यौपाने सदस्य, हुकुम पोखरेल सदस्य। निर्वाचन मिति यही असोज
4: 24 गते शनिबार।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक,
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: हंगाम रेडी मेरो एवरेस्ट
1: यहाँ गजब को ऑफर आयो यहाँ गजब को ऑफर आयो कोसेली बेकरी बीएन फूड ट्रक को फेसबुक पेज फॉलो लाइक शेयर कर 50,000 कार्टून पुरस्कार जित्नुस् लो लो लो गोजी वाला मोबाइल झिकी हाल्नुस् त अनि कोसेली बेकरी बीएन फूड को पेज फॉलो गर्नुस् पुरस्कार जित्नुस् भयंकर मजा
0: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ।

0: साथै हिन्दी कथानक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग कैमरा है।